वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਘੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी

0: के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 373.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच ते आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत

0: हुणे तुसें सुनिया भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण तुहानू सुणाउंदे आं प्रोग्राम खेतीबाड़ी।
1: खेतीबाड़ी

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

गुर गोविंद गोविंद गुरु हर गोविंद सदा विकसंदा। एक कथन पाई गुरदास जी द्वारा उचारित है जो साहेब श्री गुरु हर गोविंद साहेब जी दी महिमा बयान करता है। हाड़वदी एकम संवत 1652 विक्रमी नू गुरु की वडाली जिला श्री अमृतसर साहेब विखे पिता श्री गुरु अर्जन देव जी दे ग्रह विखे माता गंगा जी दी कुखों अवतार तारण वाले मीरी पीरी दे मालक साहेब श्री गुरु हरगोबिंद साहेब जी दल पंजन गुरसूर में वड्डे योदे अते परउपकारी कहाए। भाई गुरदास जी पहली वार दी 48वीं पौड़ी च फरमाउंदे ने, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी। पिता साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी की अगम्मी शहादत उपरंत आप जी नूं 11 साल की आरजा विच गुरगद्दी प्राप्त हुई। आप जी ने गुरगद्दी ते सुभायमान हुंदिया ही सेली टोपी उतार के दस्तार सजाई, मीरी पीरी दियां दो तलवारां पहनिया ते इंज भगती ते शक्ति दा प्रतीक स्थापित कर दिता। आप जी ने फौजां तैयार कीतियां तां जो जुल्म दा टाकरा कीता जा सके, क्योंकि धर्म दे नाल नाल नीति भी समय दी जरूरत सी। आप जी ने श्री अकाल तख्त साहिब जी दी सिरजना कीती ते मनुखता नूं जबर अते गुलामी तो मुक्त करवाउण वास्ते जंगां भी फतेह की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से

0: हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी

0: में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपये तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Have a nice day.
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्र ने 1 जुलाई तो पेट्रोल ते डीजल की विक्री ते वर्ते लाइया स्थाई पाबंदियां हटा दित्तियां ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज विच एक साल सिविल साबता UGC लागू करन दा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म सनत नूं उत्साहित करन लई एक उच्च पदरी अध्ययन समूह के गठन समेत 2 अहम फैसलों का ऐलान किया है। भारत ने पाकिस्तान वालों अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों किए गए हवाई हमलों की सख्त निखेधी की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत, 163 होर जख्मी। तो अमरीका ते ईरान होरमुज़ पणजोड़ से चल रहे विवाद से अज कतर की राजधानी दोहा में गलबात करेंगे। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने पेट्रोल ते डीजल की विक्री ते वंड नूं नियंत्रित करन वाले अस्थाई नेमबद्धी उपावां नूं वापस लैण दा फैसला कीता है। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 तो जनतक खेतर ते तेल मार्केटिंग कंपनियां दे परचून आउटलैटां दी राही मोटर स्पिरिट ते हाई स्पीड डीजल तो अस्थाई उपा हटा दिते जाणगे। पश्चिमी एशिया संकट तो पैदा होने वाले विघना के समय दौरान सरकार ने पेट्रोल ते डीजल दियां स्थिर प्रचून कीमतों नूं बनाई रख के अंतरराष्ट्रीय बालन दियां कीमतों विच तेजी नाल वाधे तो परचून खपतकारां नूं बचाउणा जारी रख्या। इस नाल परचून ईंधन दियां कीमतां ते थोक खपतकारां ते लागू होने वाली कीमतों विच वड्डा अंतर पैदा होया। मंत्रालय ने कहा कि स्थिति नूं हल करन लई इस महीने की 12 तरीक नूं पेश किए गए अस्थाई नेमबद्धी उपावां ने परचून आउटलेटां ते लोड़ींदे सनअती संस्थागत ते वपारक खपतकारां लई प्रति गाहक ज वाहन प्रति दिन 200 लीटर हाई स्पीड डीजल की अस्थाई सीमा तय की। इन्हां उपावां का उद्देश डीजल की कालाबाजारी, जमाखोरी और दुरवरतों नूं रोकना सी। नाल ही परचून खपतकारां लई पेट्रोल ते डीजल की निर्विघन उपलब्धता नूं यकीनी बनाउणा सी। देश विच पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई स्थिति का जायजा लैण तों बाद सरकार ने सिट्टा कढ़िया कि जनतक हित विच अस्थाई नेमबद्धी उपावां दी हुण लोड़ नहीं है। अस्थाई उपावां ने परचून खपतकारां दे हितां दी राखी करदे होए देश भर विच पेट्रोल ते डीजल दी ढुकवीं उपलब्धता नूं यकीनी बनाउण विच मदद कीती। इन्हां दी वापसी सप्लाई स्थिति विच सुधार ते आम सप्लाई प्रबंधां दी बहाली नूं दर्शाउंदी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज विच एक सार सिविल जाबता UCC लागू करन दा फैसला कीता है। मुख्यमंत्री सुवेद अधिकारी ने विधानसभा विच इस बारे ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिल का खरड़ा 2 जुलाई नूं राज कैबिनेट की मीटिंग विच पेश किया जाएगा। इस मकसद लई सेवा मुक्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजना देसाई की अगवाई विच एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी ब्याह, तलाक ते गोद लैण समेत 9 विषयां का अध्ययन करेगी और 4 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पट्टीदार जातां, कुर्मी अते प्राचीन कबायली भाईचारियां नूं इस कानून के दायरे तो बाहर रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म सनत नूं उत्साहित करन लई 2 अहम फैसले लए ने। यह फैसले नवी दिल्ली विच सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रधानगी हेठ हुई जायजा मीटिंग विच लए गए। इन्हां दा उद्देश भारतीय सिनेमा नूं विश्व पद्धर ते वधेरे मुकाबलेबाजी वाला बनाउणा अते फिल्म निर्माण लई एक बेहतर माहौल सिरजना है। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती दे चेयरमैन प्रसून जोशी की प्रधानगी विच कुछ पदरी अध्ययन समूह का गठन किया है। यह समूह भारतीय सिनेमा के सामने आने वाले मौकियां अते चुनौतियां का अध्ययन करेगा अते सनत नूं मजबूत करने लई सिफारशां प्रदान करेगा। मंत्रालय ने राज्यां लई मॉडल राज सिनेमा नेम भी तैयार किए ने अते उन्हां नूं अपनाउण दी अपील कीती है। सरकार का कहना है कि यह देश विच एक आधुनिक, मजबूत अते विश्व पद्धर ते मुकाबलेबाजी वाली फिल्म सनत दे विकास नूं उत्साहित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो आंध्र प्रदेश के 2 दिना दौरे ते होंगे। दौरे दौरान राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश की केंद्रीय कबायली यूनिवर्सिटी अते केंद्रीय यूनिवर्सिटी के पहले कन्वोकेशन समारोह में शामिल होंगे। 2020 से 2025-26 अकादमिक साल विचकार अपने अंडर ग्रैजुएट अते पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम पूरे करने वाले 373 विद्यार्थियों डिग्रियां प्रदान कीतियां जाणगियां। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर अते कई होर पतवंतियां दे इस समारोह विच शामिल होने की उम्मीद है। कल राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश की केंद्रीय यूनिवर्सिटी के पहले कन्वोकेशन विच शामिल होने लई अनंतपुर जाणगे। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा XNLA

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से आकाशवाणी है। प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं महक पंजाबी।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है फिल्म संगीत का प्रोग्राम। अज इस प्रोग्राम विच गलबात चल रही है फिल्म दी मेरे हमदम मेरे दोस्त। दोस्तों अज इस फिल्म दी गल कर रहे हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 दी सब तो यादगार तो रोमांटिक फिल्मों विचों एक है। फिल्म दे हीरो धर्मिंदर ते हीरोइन सन शर्मिला टैगोर। उस दौर विच ये जोड़ी ऑडियंस दी फेवरेट जोड़ियों विचों एक बनी हुई सी। फिल्म दी कहानी प्यार भरोसे परिवार ते रिश्तियां दे जज्बातों नूं बहुत ही नज़ाकत नाल पेश करदी सी। इस फिल्म की सब तो वड्डी खासियत इसका म्यूजिक सी। म्यूजिक कंपोज किया सी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने जबकि बोल लिखे सन मजरूह सुल्तानपुरी ने। प्लेबैक सिंगिंग विच मुहम्मद रफ़ी ते लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ का जादू बखेरिया। कई म्यूजिक क्रिटिक्स अज भी इस साउंडट्रैक नूं 1960 दे बेहतरीन साउंडट्रैकों विचों एक मनते ने। तो लो जी सुनदे अगला गीत इस मूवी चो मुहम्मद रफ़ी की आवाज़

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: तुसी सुन रहे हो फिल्म संगीत दा प्रोग्राम। अज असी सुन रहे हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त। एक रोचक गल ए भी है कि 1968 धर्मिंदर लई बहुत सफल साल सी। ओ उस समय रोमांस ते एक्शन दोनों तरह के रोल्स विच दर्शकां नू दर्शकां दे फेवरेट बन चुके सी। इस फिल्म विच उन्होंने एक इमोशनल ते मैच्योर किरदार निभाया जिसनू ऑडियंस ने बहुत सराहया सी। शर्मिला टैगोर की खूबसूरती ते अदाकारी इस फिल्म की जान सी। उन्हां दे एलीगेंट कॉस्ट्यूम्स ते ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म नू होर भी यादगार बना दिता सी। फैशन मैगजीन विच भी उन्हां दे लुक काफ़ी चर्चा विच रहे। अगला गीत सुनदे हां लता मंगेशकर जी की आवाज़

दोस्तों कुछ फिल्मां सिर्फ अपने रिलीज के समय ही नहीं बल्कि हर दौर में याद रखिया जांदियां ने। अभी सुन रहे सी फिल्म संगीत का प्रोग्राम मेरे हमदम मेरे दोस्त भी उन्होंने फिल्मों विचों ही एक है। इस दे गीत इस दी कहानी ते कलाकारों की अदाकारी अज भी पुराने संगीत के शौकीन दे दिलों में खास जगह रखते हैं। 9:03 के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 kHz ते आकाशवाणी है। तुसी सुन रहे हो साडा खास गजल प्रोग्राम। मैं हाँ तुहाडी मेजबान अंजना जग्गा अज रहांगी इस महफिल च तुहाडे नाल। इस महफिल उन्हां खूबसूरत अल्फाजां दे सुरां दे नाम जो दिल दी हर धड़कन नूं महसूस करना सिखाउंदे ने। गज़ल सिर्फ एक गायकी दा रूप नहीं बल्कि ये मुहब्बत, इंतज़ार, यादां, खुशी, दर्द दे नाजुक एहसासां दी जुबान है। हर शेर अपने अंदर एक कहानी समेटता है ते हर मिसरा दिल दी किसे कोने नूं जरूर छू जांदा है। तो सुनदे हां अज दी पहली गज़ल जगजीत सिंह दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जी। हेलो फरमाइश, देखते हैं आज साढ़े पहले कॉलर कौन है। हेलो जी, कौन बोल रहा है? हेलो जी, कौन बोल रहा है? लगता है आवाज़ नहीं आ रही है, साढ़े कॉलर जा चुके ने। ते उन्हां दी फरमाइश सी कि वो गाना सुनना चाहते ने, दीवाने हैं दीवानों को ना घर, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर दी आवाज़ में।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो फरमाइश, तो देखते हैं अगले कॉलर कौन ने।
1: हेलो
0: हेलो, कौन गाल कर रहे हैं?
1: हेलो
0: हाँ जी जी सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है?
1: हेलो हेलो,
0: हेलो,
1: तुहाडी
0: हाँ जी आवाज़ आ रही है?
1: आवाज आ रही मैडम थोड़ी जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी, की हाल चाल?
1: नमस्कार, ठीक है मैडम जी। कहने ना जाने ये नजर क्यों उदास रहती है,
0: हाँ जी
1: न जाने से किसकी तलाश रहती है।
0: बिल्कुल जी,
1: ये जान के भी फोन कॉल लगे या ना लगे,
0: हाँ
1: फिर
0: जी,
1: भी हमें फोन लगने की आस रहती है।
0: वाह जी वाह, तुसी साडा
1: मैडम
0: प्रोग्राम रोज
1: जी
0: एंजॉय
1: कबूल
0: करते
1: करो,
0: हो।
1: शीश गुलियानी भी प्यार भरी नमस्कार, दिल खुश हम आपके तो बोल
0: बहुत
1: रहे हैं। जी
0: बहुत
1: शुक्रिया
0: स्वागत है प्रोग्राम विच।
1: मैडम जी, मेहरबानी,
0: हाँ जी,
1: धन्यवाद।
0: होर की करते हो तुसी?
1: मैडम मेरा फूड सप्लीमेंट का कम है जी,
0: ठीक है जी, फिर आज केड़ा गाना सुनना
1: लोगों
0: चाहते
1: को
0: हो?
1: पतले से मोटे कर दिया जी।
0: हाँ जी
1: यही कहना चाहूंगा कि नशे तो दूर रहो
0: बिल्कुल
1: और अपनी सेहत का ख्याल रखो जी।
0: बिल्कुल जी, सारे नौजवानों नु असि यही संदेश दिने आ कि नशा
1: हाँ
0: तो दूर
1: बिल्कुल
0: रहना
1: मैडम,
0: चाहिए
1: थोड़ी
0: और
1: सेहत
0: तरक्की
1: तंदुरुस्त
0: करनी
1: है तो
0: चाहिए
1: सब
0: है।
1: कुछ सही है, करोड़ रुपया पे हो तो सेहत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा।
0: बिल्कुल जी,
1: इस करके गाने सुनो तो सेहत बढ़िया रखो।
0: ठीक है जी,
1: मैडम जी प्रोग्राम है ना, ये बीमारा भी ठीक कर दे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, गाने सुनो, मस्त रहो और एंजॉय
1: हाँ
0: करो, लाइफ
1: बिल्कुल
0: का यही
1: बिल्कुल जी,
0: मोटिव है।
1: किसी का बुरा ना करो, सब का भला मंगो।
0: हाँ जी
1: गाना सुना दो मैडम जी, बाबुल की गलियां एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार।
0: ठीक है जी, कोशिश कर दिया तो हड्डा ये गाना मिल जाए, अगर ये नहीं मिलता तो कोई और गाना सुना
1: हाँ
0: दिया।
1: कोई गल नहीं मैडम, और भी सुना दो।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो फरमाइश, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से आकाशवाणी है। देखते हैं अगले कॉल किस दी आई है। हेलो नमस्कार जी।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: की हाल चाल है
1: मैडम जी? मैं पॉल बोलदा सराबा नगर जलंधर तो जी।
0: हाँ जी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ।
1: ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

0: हाँ जी हाँ,
1: और की काम कार करते हो तुसी?
0: साडी मैडम जी पेंट की शॉप है, नाल मैं ठेकेदारी करदा हां।
1: ठीक है जी, तुसी साडे श्रोतियां नूं कोई सुनेहा देना चाहोगे?
0: बस यही हुई है जी, सुनेहा देना चाहते भी जिवें हुण बरसात शुरू हो गई है तां बरसात दे विच कोई ना कोई पेड़ जरूर लाउणा चाहीदा है।
1: हाँ जी
0: जिवें आपां नूं पता है कि ग्लोबल वार्मिंग है तां उहदे हिसाब नाल पोल्यूशन वध रिहा, ते सानूं कोई ना कोई इक अद्धा जरूर पेड़ लाउणा चाहीदा। अगर पेड़ नहीं ला सकदे
1: हाँ जी
0: तां जिहड़ा साडे कोल जिदां अजकल अंब खांदे आ जां जामुन खांदे आ जां
1: जी
0: अमरूद आ जां होर कोई गुठलीदार पेड़ खांदे
1: हाँ जी
0: आ फल खांदे कोई भी,
1: जी
0: ते उहनां नूं सानूं कूड़े सुट्टण दी बजाए सानूं ना उहनां नूं जाते जाते रोड के उपर सुट दो। अगर कि पासे
1: कच्ची
0: किसी
1: जगह ते
0: जगह
1: सुट
0: हैगी तो
1: देना
0: उत्थे
1: चाहिदा है।
0: दब दौ, नहीं तो रोड के उपर सुट दौ, तो ता भी जे 40-50 भी सुट्टे होंगे तो बिचो एक दो भी उग गए तो कुछ ना कुछ तो पोल्यूशन फर्क पवेगा जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, जाने अनजाने असी किसी भी तरह अपनी कुदरत नूं थोड़ा जिहा
0: बिल्कुल
1: योगदान तो
0: जी,
1: देना ही चाहिदा है। केड़ा गीत
0: अभी
1: सुनना
0: सानू कुछ ना
1: चाहोगे?
0: कुछ अपना योगदान देना बहुत जरूरी है जी।
1: बहुत ज़्यादा जरूरी है।
0: हाँ जी,
1: होर केड़ा गीत सुनना चाहोगे अज?
0: गीत मैडम सुना दो। फिल्म का नाम है हमराज, ते गीत दे बोला तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुना
1: ठीक है
0: करूं।
1: जी, इंजॉय करते हैं मोहिंदर कपूर की आवाज़ विच ए गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से

0: शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुण तो लैके 5 बजे तक तुहाडा दोस्त तुहाडा रेडियो बेली गौरव तुहाडे नाल रहेगा और प्रोग्राम सारे सुणांगे। इसी तरह तुसीं नाल रहना बस आकाशवाणी जलंधर दे। फिलहाल समा हो गया है व्हाट्सएप ते आधारित साढ़े प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी दा। जिहड़े भी स्रोतिया ने सवेरे 10 बजे तो लैके 10:30 बजे तक साढ़े फोन नंबर 9496536077 ते व्हाट्सएप कीते ने, उन्हां दे फरमाइशी जिहड़े गीत ने ओह चलाए जाणगे। ते आओ फिर रब दा नां लैके शुरू करिए प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
3: जी श्रोतियों असी फिर एक बार वापस हाँ और सारे के सारे संदेश तुहाडे लई बहुत जरूरी हुंदे ने, इन्हां दे विच इनफॉर्मेशन दित्ती गई हुंदी है और नाल ही तुहाडे लई जानकारियां और जिहड़ियां तुहाडी जीवन नूं होर सुखाला बना सकदियां। फिलहाल प्रोग्राम जिहड़ा असी सुखाला बना रहे हां तुहाडे सारिआं दे मैसेज जिहड़े ने पढ़ के, और अगला मैसेज आ गया जी हरजीत सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, नवदीत पाटिया, पप्पी पाटिया, सोनू पाटिया कहिंदे ने शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा कि तुसीं मैसेज कीता है। और ये जमशेदपुर तो साढ़े नाल जुड़े ने और इन्होंने अपनी फरमाइश भेजती है, तुहाडी फरमाइश जिहड़ी है असीं जरूर चलावांगे जी। साउथ एवेन्यू अबोर तो जसपाल भारती, वीना भारती, सुरेंद्र मनदीप, डिंपल युवराज, हैप्पी ते शिवाय ये भी जुड़ गए ने और इन्होंने सतेंद्र सरताज का गीत किया सी, चलाता जी आपां देखो तुहाडे कहन तो पहले ही। और एक मैसेज होर आया इन्होंने पद्मा टॉकिस नेपा नगर तो मैसेज किया है, करन वाले ने सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभी, अश्वनी, मंगलाबेन ते राजेंद्र जी शाह और सारा का सारा शाह परिवार कहता है कि सानू कोई पंजाबी गीत सुना दो। देखो जी पंजाबी गीतों का प्रोग्राम है, जरूर सुनावांगे। मेन बाज़ार मंडी लदुखा फाजिलका तो साढ़े नाल जुड़े ने वरिंदर कालड़ा, रेखा कालड़ा, प्रेक्षित प्राची ते सारा का सारा कालड़ा परिवार जी आया नो जी। प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी दे विच तुसीं भी धमका पाण आ गए हो। कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखेंद्र सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना इन्होंने भी अपना जिहड़ा है मैसेज करता है, मैसेज पहुँच गया साढ़े कोल, बहुत बहुत धन्नवाद। संजय टिंगिया, नमन टिंगिया ते अपार टिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश तो जुड़े ने, इन्हां नूं बहुत बहुत शुक्रिया कहिंदे आं असीं। अभिजीत गहनाकार राही, श्रीमती सरिता गहनाकार, प्रिंस एकांश, परिणता सिद्धांत, अर्जुन ते ये सारे दे सारे साढ़े नाल जुड़े ने और विशाली, शैलेश, सुमित कुमार ध्वनि ये भी अलग अलग जगह तो साढ़े नाल जुड़े ने, मुंबई तो, उमरखेड़ तो, बहादुरपुर, नागपुर तो, देखो जी अलग अलग प्रांतों तो, अलग अलग ज़िलों तो, और यही साढ़े भारत देश की निशानी है एकता दे जिहड़ी ये सुर दे विच परोंदी है ना सानू म्यूजिक, ये साडा विरसा है जी। पटेल नगर मलोड़ तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता राणी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू गुड्डू ये भी जुड़ गए ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और उस तो बाद सुखदेव सिंह, नरमर कौर, नरनंद कौर, नरनंदर कौर और सनी मनी, काका बिट्टू, लाडी, मास्टर मोहन, जनक नगर जलंधर तो, जलंधर ही हो आ गए हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज सानू पहुँच गया उहदे विच मजनू दे टिल्ले तो कमल बलूजा, मधु सागर, उमंग, आकांक्षा, गुड़िया, माही ते इशिता ये भी जुड़ गए ने जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैसेज जिहड़ा इन्होंने 10 बजे किया है, इन्होंने हिंदी फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है लेकिन हिंदी फिल्मों वाला जिहड़ा हैगा प्रोग्राम उहदे च असीं मैसेज नहीं लैंदे दोस्तों, उहदे च सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल्स लैंदे आ। मैसेज जिहड़ा तुसीं करना वह पंजाबी गीतां लई करना, तुहाडा नाम है पढ़ देना लेकिन तुसी फरमाइश हिंदी गीत की कीती है वह नहीं चलेगी क्योंकि प्रोग्राम पंजाबी है। गोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र, शिंपा, कपिल, ईशान ते पूजा परिहार, अगली बारी पंजाबी गीत की फरमाइश करनी है हिंदी गीत की नहीं। मुहम्मद बरहुद्दीन, फजान लल्ला, फरजन लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया ये कहते ने आपका तहे दिल से शुक्रिया। तेलंगाना भांगीर तो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा जी, तुसी मैसेज किया और पंजाबी गीत की फरमाइश की है। आदरणीय मेज़बान जी नमस्कार, कोई भी गीत सुना दो, थैंक यू जी। आदर्श नगर मलोड़ पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ साइना, निमान शर्मा और जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सारिआं दा। और ये सारे कहिंदे ने कि सानू गीत सुना दो जी, सुरजीत बिंद रखिया दा लो जी, तुसी सुरजीत बिंद रखिया साहब नू आवाज़ मारीए तो जरूर आणगे, तुहानू अपना जिहड़ा गीत है वह जरूर सुनाणगे। तो आओ फिर उन्होंने गाया, ये गीत सुनिए

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: हेलो
2: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास

0: शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगो वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तो हुण सुनदे आं भैणा दा अपना प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार। वसदे बेड़े प्रोग्राम लैके है जी, असी हाजिर हाँ, यानी दो प्यारियां प्यारियां मिठियां मिठियां आवाज़ां।
0: बिल्कुल जी, ते वसदे बेड़े लैके प्रभजोत भी हाजिर है ते प्रिया दी मिठी आवाज भी हाजिर है जी।
1: नहीं, आवाज़ तो तुहाड़ी भी बिल्कुल मिठी है। भी असी सुहानियां ना, जो भी होवे, चाह इन्नी मिठी पीने ना, ते आवाज़ जिहड़ी है साडी कुदरतन मिठी हो ही जांदी।
0: बिल्कुल जी, और असी उम्मीद करदे आ कि साडियां भैणां भी मिठी चाह पीदियां होणियां, पर जिन्हां नूं थोड़ी जी डायबिटीज है ओह थोड़ा जा अपना अवॉइड कर लैन, थोड़ा जा परहेज कर लैन। अच्छा प्रिया, अज एक बहुत ही वड्डा दिन है।
1: बिल्कुल
0: न?
1: जी,
0: अज मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश पुरब है, और असी सारे ही मिलके उन्हां नूं प्रणाम करदे हां, और सारे सुनन वालियां नूं वधाई भी दिंदे हां, क्योंकि अज उन्हां दा प्रकाश पुरब है
1: जी।
0: देखो गुरु साहब का जिहड़ा जन्म है वह माता गंगा जी के घर होया सी, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और माता गंगा जी नूं बाबा बुढ़ा जी तो वर मिला सी कि तुहाडे घर ऐसा जोधा पैदा होएगा जिहड़ा कि सारे जिहड़े जिहड़े की कहिंदे ने उन्हां नूं प्रिया, भी चलो
1: आन वाली जिहड़ी जेनरेशन है
0: जी,
1: है ना,
0: हाँ उन्हां दा नाश करनगी। मतलब
1: अच्छा, मतलब
0: हाँ,
1: आन वाली जिहड़ी भी बुरी साडे समाज दे विच कुरीति होएगी।
0: बिल्कुल, ओ जोधे सन, बहु परोपकारी सन, है ना
1: जी।
0: और देखो उन्हां दा जन्म होया, और मीरी पीरी दे मालक इस करके कहा गया कि उन्होंने दो जिहड़ियां तलवारां ने
1: बिल्कुल

0: जी
1: जी गीत तां हो गया, पर ये
0: हम्म,
1: छल्ला जेड़ा है ना, ये साडे तक या साडी जिंदगी दा हिस्सा कितें ऐवें नहीं बन गया वैसे।
0: हाँ
1: हाँ
0: अच्छा,
1: प्रभजोत जी, इदे पिछे ना एक बड़ी दुख भरी जी कहानी है
0: ओहो,
1: वैसे
0: वो तो
1: तां।
0: मैनूं लग ही रहा है कि तुसीं जिहड़ी सुनाण लगे हो दुख भरी होएगी। चलो
1: जी,
0: जी।
1: छल्ला ना दरअसल प्यो पुत्तर दी दास्तान है, जिस बारे किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं मैनू लगता कीती हजे तक। तो मैनू लग्या भी बस वेड़े दे जरिए जे अज मौका मिलिया तो जरूर अपने श्रोतियां तक
0: जी
1: पहुंचानी
0: जरूर।
1: चाहिए है। ते हरि के पत्तन दा रहण वाला एक मलाह सीगा, जिसनों रब ने एक पुत्र दी दात नाल नवाजिया सीगा। जदे जला जिहड़ा मलाह सीगा उसका नाम, उन्हें अपने बेटे का नाम छल्ला रख्या सी, ते बहुत ही प्यार नाल उसकी परवरिश की।
0: जी
1: ये मलाह दा छल्ला जद निक्का जिहा सी ते उहदी माँ जिहड़ी सी उह इस दुनिया तो रुखसत हो गई, ते जला मलाह इस नूं अपने नाल हमेशा रोज़ काम ते लै जांदा। ते भी एक दिन छल्ले नूं लै के जद जला मलाह काम ते गया, ते मलाह दी उस दिन सेहत ठीक नहीं सी, ते उहने कहा भी अपनी सवारियां नूं कि भई तुसी अज मैं किश्ती उस पार नहीं लै के जा सकदा, तुसी कोई होर अपना इंतज़ाम कर लो। हुण सवारियां कहन लगियां कि भई तू अपने पुत नूं कह कि उह सानूं दूसरे पासे छड के आवे।
0: जी
1: सारियां ने जोर

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਤੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर

0: शक्ति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है। तो हुण तुहानूं असीं अपने बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा एक वेरवा देंदे चलिए।

हुण तो थोड़ी देर बाद यानी 1:15 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरा लई। बाद दोपहर 2:30 बजे समा होएगा लोक गीतां दे साडे प्रोग्राम रंगली धरती दा, जिदे विच अज तुसी जोगा सिंह लोगी कविशर ते उनां दे साथियां वल्लों गाई कविशरी सुनोगे। साड़ी दूजी सभा की शुरुआत दे विच 4:02 ते समा होएगा पंजाबी फिल्म संगीत दा। और गुरबाणी विचार ये प्रोग्राम तुसी सर्वन कर सकोगे रोजाना दी तरह शाम 5:30 बजे। साढ़े 6 बजे तुसी साढ़े प्रदेशिक चैनल ते ICC वुमन T20 वर्ल्ड कप 2026 दे सैमीफाइनल मैच जिदे विच आस्ट्रेलिया और वैसट इंडीज़ दीआं टीमां अज भिड़नगियां उहदी लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री सुन सकोगे। और साड़ी मोबाइल ऐप ते तुसी सुन सकोगे देहाती प्रोग्राम जिदे विच अज वातावरण अते कुदरती संतुलन बारे HS सरला छोरा नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी। सौनी फसलां ते पानी दा प्रबंध इहदे बाबत वी गलबात कीती जाएगी। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल दस्या जाएगा। 7:40 ते तुसी सुनोगे इंग्लिश टॉक। टॉकर होणगे डॉक्टर उषा कपूर और विषय रहेगा एजिंग विद ग्रेस। जिंदगी हसीन है ये प्रोग्राम तुसी 8 बजे साड़ी मोबाइल ऐप ते सुन सकोगे। रात 9:30 बजे समा होएगा स्पोर्ट्स मैगजीन प्रोग्राम खेड संसार दा।

प्रोग्राम चल रहा है जी फौजी वीर लई। और फौजी वीरो एक होर गीत तुहाडे नाल सांझा करन जा रहे हैं जिन्हों गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक होरा ने। जी हाँ, कुमार सानू अलका याग्निक की ये आवाज़ और ये जिहड़ा गीत है ना, इस गीत नूं उस जनरेशन ने बहुत प्यार दिता है। ना कि सिर्फ उस जनरेशन ने बल्कि हर जनरेशन जदों ये गीत सुनती है ना तां वो हमेशा ही प्यार दिंदी है। फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत जिन्हों लिखिया समीर ने और संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। और ये भी गीत फौजी वीरो तुहाडी जिंदगी दे नाल जुड़दा जरूर है। किद्दां जुड़दा है जदों तुसीं ये गीत सुनोगे ये तुहानूं पता लग जाएगा। तो आओ सुनते हैं ये गीत।

0: प्रोग्राम चल रहा जी फौजी वीरां लई और एक छोटा जा संदेश, संदेश तो बाद फिर जुड़ांगे।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 43.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 39.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਤੋਂ 4-3 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਚ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਆਲਮੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥੰਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीबुर रहमान। यूरोबैंक ने यूनान से भारत रुकुमात की मुंतकली में सहूलियत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तौसी में संगमील करार दिया है। दिल्ली और चार रियासतों में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जाम नज़रसानी का अमल शुरू हो गया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुस्तरद कर दिया है। मौसमियात महकमे ने उत्तर प्रदेश के बाज हिस्सों बिहार, वस्ती, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले दो दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी पेनाल्टी शूटआउट में पैरागुए से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मराकश नीदरलैंड्स को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। यूरोबैंक ने यूनान से रुकुमात भारत मुंतकिल करने के लिए यूपीआई पर मबनी रुकुमात की मुंतकली की सर्विस का आगाज़ किया है, ताकि कम से कम खर्च पर कम वक्त ही में रकम भारतीय सार्फीन को मुंतकिल करने में सहूलत हो सके। ये पहल भारत की अदायगियों से मुतालिक कौमी कारपोरेशन NPCI के साथ मस्कूरा बैंक के कलीदी इश्तराक का हिस्सा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कॉमर्स और सनातों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि यूरो बैंक में मस्कूरा खिदमात का आगाज आलमी सतह पर भारत के डिजिटल अदायगी इको निज़ाम की तौसी में एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा है कि आलमी सतह पर UPI की बढ़ती हुई मकबूलियत और इसकी सताइश से तकनीक पर मबनी हल निकालने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नज़रिए में एतमाद की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश का दो दिन का दौरा कर रही हैं। वो आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की पहली तकरीब में शिरकत कर रही हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मुकम्मल करने वाले 373 तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 10 खवातीन समेत उम्दा तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 13 तलबा को गोल्ड मेडल भी पेश करेंगी। सदर जमहूरिया आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। कौमी राजधानी दिल्ली और चार रियासतों में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जाम नज़रसानी SIR के तहत घर घर जाकर राय दहिंदगान के बारे में मालूमात हासिल करने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कर्नाटक में सभी 31 जिला चुनाव दफातर में इस काम के लिए 59,000 से ज़्यादा बूथ लेवल अफसरों को मुतय्यन किया गया है। इस अमल में 4 इजाफी ज़िला चुनाव अफसर, 224 चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर और 7,556 BLO सुपरवाइजर्स भी शामिल हैं। सियासी पार्टियों ने 1,15,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट मुकर्रर किए हैं जो BLOs के साथ मिलकर काम करेंगे। इधर कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली में भी SIR के तहत घर घर जाकर चुनाव एनुमरेशन फॉर्म तकसीम

0: करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके तहत 13,000 से ज्यादा बीएलओज अगले महीने की 29 तारीख से घर घर जाकर सभी मौजूदा राय दहिंदगान को एनुमरेशन फॉर्म तकसीम करेंगे। दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में दावे और एतराजात 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि राय दहिंदगान ये इनोमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। इधर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कौमी राजधानी में सभी अहल राय दहिंदगान से अपील की है कि वो नजरसानी के इस अमल में शामिल हों। ज़रात और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा है कि ज़रई शोबे को फरोग दिए बगैर विकसित भारत के नज़रिए को हासिल नहीं किया जा सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कर रही है जिससे मिट्टी और ज़रई ज़मीन को दरकार कीमियावी खाद की मकदार के बारे में जानकारी फराहम की जा सकेगी। वजीर मौसूफ ने किसानों पर जोर दिया कि वो अपने खेतों में फर्टिलाइजर और जरासीम कुश दवाओं का इस्तेमाल मुतवाजिन अंदाज से करें ताकि ज़रई ज़मीन दुरुस्त हालत में रहे। उन्होंने किसानों को ये सलाह भी दी कि वो ऑर्गेनिक खेती का तरीका इख्तियार करें।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि भारतीय फौज की ताकत किसी शख्स से वाहिद से नहीं बल्कि उसके फौजियों, कमांडरों, रिटायर्ड फौजियों, कुंभों और भारत के शहरियों के नाकाबिल मुतजलजल यकीन व एतमाद से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने यह बात आज नई दिल्ली में फौज के सरबराह के तौर पर अपने ओहदे से सुबकदोश होते हुए कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 4 दहाइयों से ज्यादा भारतीय फौज में खिदमात अंजाम देना उनके लिए सबसे बड़ा एजाज रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अपने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तईं अपनी हिमायत का इरादा किया है और कहा है कि दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम किए जाने के खिलाफ आलमी मुहिम और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में यह एक अहम सुतून है। भारत के इस बयान से कबल पाकिस्तान ने FATF पर नुक्ताचीनी की थी क्योंकि ज्यादा निगरानी की खातिर पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। दहशतगर्दी से निपटने से मुतालिक हफ्ते के मौके पर अक्वामे मुत्तहिदा के एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि FATF की साख पर सवाल उठाने की कोशिश से हकीकी तशवीश की बजाय जांच के खौफ की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा है कि जिन मुल्कों को FATF के नामुवाफिक तजजिए का सामना है उन्हें अपनी कमी और कोताहियों पर तवज्जो देनी चाहिए और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम बनाना चाहिए। कई आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक्वामी बरादरी ने अफगानिस्तान के पक्तिया, पक्तिका और कुनार सूबों में पाकिस्तानी फौज के फजाई हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत आम शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इससे कबल तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने बताया कि ये फजाई हमले 28 जून की रात को किए गए थे जिनमें 36 आम शहरी मारे गए जबकि 163 जख्मी हुए। इन हमलों में 3 रिहायशी मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने फौरी तौर से मुखासमत रोकने पर जोर दिया है और सभी फरीकों से कहा है कि आम शहरियों का तहफ्फुज किया जाए। मगरबी एशिया में कशीदगी को कम करने की सिफारती कोशिशों में इब्तदाई रुकावटें पैदा हो गई हैं क्योंकि अमरीका और ईरान दोहा में अगले दौर के तबादले ख्याल से मुतालिक अलग अलग नज़रियात पेश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि ताज़ा बातचीत दोहा में हो सकती है। अलबत्ता ईरान ने यह कहते हुए इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का सरदस्त कोई मंसूबा नहीं है। मौसमियात के महकमे ने उत्तर प्रदेश के बाद हिस्सों बिहार, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय साहिली मुहाफिजी दस्ते के बहरी जहाज सचेत ने मैंगलोरो के साहिल के नज़दीक समंदर में तलाश और बचाव कार्रवाई में माहिगीरी के काम आने वाली मुश्किल में घिरी हुई भारतीय कश्ती मंजू माथा में से 6 माहिगीरों को बचाया है। 2026 के फीफा

0: कप में जर्मनी नॉकआउट मरहले में टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। बोस्टन में पैराग्वे ने पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी को 3-4 से हरा दिया। मुकर्रा वक्त तक दोनों टीमों ने एक एक गोल किया था। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम को पहली मर्तबा पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इधर पैराग्वे इस कामयाबी के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। यूरोबैंक ने यूनान से भारत रुकूमात की मुंतकली में सहूलत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तौसी में संग मील करार दिया है। दिल्ली और 4 रियासतों में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी का अमल शुरू हो गया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तई अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने क्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुस्तरद कर दिया है। मौसमियात महकमे ने उत्तर प्रदेश के बाद हिस्सों बिहार, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले 2 के दौरान शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: फौजी वीरो एक बारी फिर स्वागत है। प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ फौजी वीरा लई और जिथे प्रोग्राम छड़िया सी उत्थों एक बारी दोबारा शुरू करन जा रहे हैं। जिहड़ा गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं उस गीत नू गाया विनोद राठौर ने और उस गीत दे नाल ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दे विच एक बहुत वड्डे स्टार सुपर स्टार ते जे मैं कहां कि बादशाह दा जन्म होया सी। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ ਵਿਨੋਦ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗੀਤ।

जी फौजी वीरो विनोद राठौर का गाया ये गीत, और जिदे नाल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री च एंट्री हुई सी शाहरुख खान होर दी। और एक होर गीत सुनान जा रहे हैं, ये भी गीत जड़ा है शाहरुख खान होर ते ही फिल्माया गया है। और ये गीत जदों भी वजदा है ना तो दिल दे करता है कि रेल गड्डी होवे और आपा उहदे विच होईए। वैसे इस गीत के उपर तो शाहरुख खान रेलगड्डी के उपर सी, पर वो करना कानूनी जुर्म है, वो तुसी करना नहीं किसी ने। लेकिन ये गीत की जड़ी रूह है वो यही है कि सुखविंदर सिंह की आवाज़ है, नाल सपना अवस्थी की आवाज़ है, और एक रूहानी जी म्यूजिक नूं तुसी देखते हो इस फिल्म इस गीत दे विच। इस गीत की जी मैं गल कर रहा, इनू लिया गया फिल्म दिल से 1998 के आई सी। इनू कंपोज किया ए आर रहमान ने, लिखा सी गुलजार साहब ने, और गाया सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी ने। और इस गीत दे नाल ही बहुत प्रसिद्धि भी मिली सी सुखविंदर सिंह होरां नू। वो पहले आ चुके से जरूर, और पंजाबी सिंगर ने, जलंधर तो उन्हों का राबता बड़ा। ऑल इंडिया रेडियो जलंधर की गल करा या मैं दूरदर्शन की गल करा, बहुत गाया उन्होंने। तो फिल्म इंडस्ट्री विच खास करके मुंबई दी हिंदी दी फिल्म इंडस्ट्री विच उन्होंने

बहुत छाप छड़ी है, और ये गीत उन्हां लिए भी बहुत दिलों करीब है, और क्योंकि ये वो पहले गीता में सी जिन्होंने जिन्हों गा के सुखविंदर सिंह द ग्रेट सुखविंदर सिंह बने। तो आओ फिर सुनिए ये गीत।

0: ਜੇ ਇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षण

0: भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले भी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम, विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष

0: 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूंका गया था। क्रांतिकारी

0: ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ए जलंधर केंद्र है। तो आओ हुण सुनदे हां लोक गीतां ते आधारित साडा प्रोग्राम रंगली धरती। इहदे विच अज जोगा सिंह लोगी कविशर ते उहनां दे साथी कविशरी सुणांगे। और प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रोग्राम की शुरुआत दे विच प्रसंग जन्म श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ये उत्ते कविश्री जिहड़ी है जोगा सिंह जोगी ते उन्हां दे साथी लैके आ रहे हैं।

केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज इस गल ते जोर दिता है कि खेतीबाड़ी खेतर दे विकास तो बिना विकसित भारत का सुपना साकार नहीं हो सकता। भारत ने वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स FATF नूं दहशतगर्दी वित्त पोषण ते मनी लॉन्ड्रिंग खिलाफ आलमी लड़ाई का एक लाजमी थम दसदियां अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की है। भारत समेत अंतरराष्ट्रीय भाईचारे ने अफगानिस्तान विच पाकिस्तान फौज वालों किए गए हवाई हमलों की सख्त निंदा की है। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अज कहा है कि भारतीय फौज में अपनी ताकत किसी एक व्यक्ति तो नहीं सगो अपने सैनिकां कमांडर सबका सैनिकां उन्होंने परिवार देश के नागरिकों की अटुट विश्वास तो मिलती है। वह अज अपनी सेवा मुक्ति मौके बोल रहे सन। सेहत मंत्रालय ने सारे केंद्रीय सरकारी विभागों ते संस्थावां नूं आवारा कुत्तियां दे हमलियां संबंधी सुप्रीम कोर्ट दे दिशा निर्देशां दी पालना नूं अज तों यकीनी बनाउण दे निर्देश दित्ते ने। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने सूबे दे हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाउण लई इस साल दे अखीर तक 7000 किलोमीटर होर पाइपलाइनां बिछाउण दा ऐलान कीता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सीनियर पुलिस अधिकारियों नूं युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम नूं होर तेज करन दे निर्देश दित्ते। मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश पुरब अज पूरी धार्मिक श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। श्री पंजाब रणजीत सिंह दी बरसी मौके समागमां च शामिल होने लई पाकिस्तान गया श्रद्धालुआं दा जत्था अज भारत वापस परत आया है। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों विच कल तो तेज हवावां नाल भारी मीह पैण दी संभावना है।

प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी फिल्मी गीत और अगला जड़ा गीत तो सुना जा रहे हैं उन्होंने गाया है मुहम्मद रफ़ी ते नाल उन्होंने मिन्नू पुरशोत्तम होरा ने ते फिल्म है पगड़ी संभाल जट्टा ते आओ सुनते हैं ये गीत है।

प्रोग्राम चलेगा जी पंजाबी फिल्म म्यूजिक, और अगला गीत सुनाने जा रहे हो तो जसविंदर नरूला और उन्हां दे नाल ने योगराज सिंह, इन्हां दे गाए हुई बोलियां ने फिल्म नॉटी जट्स तो। चलो आओ जी फिर सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत।

तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच पगवाना। ए कथन सर्ब शक्ति सर्ब कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दी उस्तत विच उचारित ने, क्योंकि उस प्रभु दी महिमा जानन वाला ही उस प्रभु दे गुण गायन कर सकता है। जेकर कोई उसदे गुण गायन करदा भी है तां ते फिर उस प्रभु दी कृपा सदका उस दी बख्शी हुई जिंद जान प्राण करके ही उसदे गुण गायन करदा है। वरना असी जीव किस तरह उस प्रभु दे गुणा नूं चेते कर सकते हाँ। क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे। बै खरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख सदा दयालु है, ओ दातां वंडदिया थकदा नहीं, ओ नित नवियां दातां अपने प्यारियां नूं बिना किसे वितकरे दे प्रदान करदा है। इसे करके तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस शब्द दा गायन कीता है भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दयालु है, उस ते भरोसा रखण वाले जन, उस दी महिमा नू जानण वाले इस लोक विच माण मर्तबा प्राप्त करदे हन। ऐसे ही गुरसिख सन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी। आप बीड़ बाबा बुढ़ा जी स्थान ते काफ़ी समा विचरे। इतिहास अनुसार माता गंगा जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे महल साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दी प्रेरणा सदका बाबा बुढ़ा जी पास बीड़ बाबा बुढ़ा जी विखे पुज्जे। आप जी दे मन विच संतान प्राप्ति दी इच्छा सी। आप जी ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी नू अरदास करन वास्ते बेनती कीती। बाबा बुढ़ा जी नू अकाल पुरख ते पूरन भरोसा सी। आप जी ने अरदास कीती ते परमात्मा ते भरोसा रखदे हुए माता गंगा जी नाल सहजे ही बचन कीते। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे ग्रह विखे माता गंगा जी दी कुखों साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अवतार तारिया। पूरे गुरु ने बख्शिश कीती, अर्थात उस अकाल पुरख दियां दातां नित नवियां हन। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। सरवण करदिआं इस शब्द दी व्याख्या व्याख्याकार ने ज्ञानी दलेर सिंह जोश।
1: तनासरी महला पहला घर तीजा जप दे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी

0: रैण दिनस प्रभात, तू है ही गावणा, जी जंत सरबत नाओ तेरा त्यावणा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से

0: भारत में धन भेजने के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे हां अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा। अज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे काम दियां गल्लां, वातावरण अते कुदरती संतुलन बारे जानकारी देंगे। HS सरला च सौनी फसलां अते पानी प्रबंध बारे भी इस प्रोग्राम दे विच जानकारी दित्ती जाएगी। प्रसंग जन्म हर गोबिंद साहिब जी दा ए भी तुसी सुनोगे और इस तो अलावा कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर 1। ये परिवारिक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा।
4: हाँ जी।
5: उन्हें पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तो कारा जावांगे। हाँ
4: क्यों? पर मैं
5: कल दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
4: इन्ने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लिए 30,000 दियो, नहीं ता बेटा जेल जावेगा।
4: जेल ता तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
5: ओए,
4: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्ना नु पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नु रिपोर्ट करो।
6: हेलो मम्मा।
4: हाय।
7: RBI कहिंदा है
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स फाजिलका, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स कसौली ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इन्हां मीटरां ते तुसी शाम 6:30 बजे आस्ट्रेलिया ते वैसट इंडीज़ दीआं टीमां दरमियान खेडे जा रहे ICC वूमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 दा पहला फाइनल मैच दा आखी डिठा हाल सुन सकोगे। अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम तुसी सुन सकोगे साडे वेव ऐप दे राहीं। हुण इस वेले शाम दे 6:20 होण जा रहे ने, बेला हो रहा है प्रादेशिक खबरां दा। एक बार असी थानू फिर जानकारी दे दिए कि मीडियम वेव के सारे चैनल्स के उत्ते तुसी शाम 6:30 बजे क्रिकेट की कमेंट्री सुन सकोगे ते बाकी सारे साडे प्रोग्राम तुसी वेव ऐप राही सुन सकोगे। हुण सुनदे आं प्रादेशिक खबरां।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खेतीबाड़ी खेत्र दे विकास तो बिना विकसित भारत दा सुपना साकार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब संबंधी अज पंजाब मोबाइल डॉक्यूमेंट्री वैना नूं कीता रवाना। संगरूर विच ओलंपिक पद्धर दे स्विमिंग पूल दा वी उद्घाटन कीता। मीरी पीरी के मालक 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब अज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जा रहा है। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अज पटियाला विखे संबंधित विभागों के अधिकारियों नाल ड्रेनेज प्रबंधन का लिया जायजा अते मौसम विभाग ने कल 1 जुलाई तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च गरज चमक नाल भारी बारिश

0: निचले तापमान च गिरावट की पेशेनगोई की थी। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतीबाड़ी खेतर दे विकास तो बिना विकसित भारत का सुपना साकार नहीं किया जा सकता। अज हरियाणा के रेवाड़ी जिले च बवाल स्थित खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी विखे खेत बचाओ अभियान के समाप्ति समारोह में संबोधन करदिया श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने ते काम कर रही है जो मिट्टी ते इस विच लोड़ींदी खाद की मात्रा बारे जानकारी देवेगी। उन्हां किसानां नूं मिट्टी की पैदावार बनाई रखने लई अपने खेतां विच संतुलित ढंग नाल खादां ते कीटनाशकां की वरतों करन दी अपील कीती।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: सेहत मंत्रालय ने सारे केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थावां नूं आवारा कुत्तियां दे हमलों संबंधी सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देशों की पालना नूं अज तो यकीनी बनाने के निर्देश दिए ने। सारे संबंधित विभागों नूं एक निर्धारित समा हद के अंदर दिशा निर्देशों नूं लागू करने लिए आख्या गया। यह हुक्म पिछले साल सर्वोच्च अदालत के फैसले तो बाद जारी किया गया सी। इसका उद्देश जनतक थावां नूं खास करके बच्चों ते मरीजों लई सुरक्षित बनाउणा है। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब नूं श्रद्धा पूर्वक मनाउण लई पंजाब सरकार की वचनबद्धता दोहराउंदिआं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज संगरूर तो पंजाब मोबाइल डॉक्यूमेंट्री वैना नूं रवाना किया। यह वैना गुरु जी के बराबरी समाजिक न्याय श्रद्धा ते विश्वव्यापी सांझीवालता के सदीवी सुनेहे नूं सूबे के कोने कोने तक पहुंचाउणगीआं। इस विशेष तौर पर तैयार की गई मुहिम तहत LED नाल लैस मोबाइल वैना राही पंजाब के सारे 23 जिलों के करीब 13,000 पिंडां च गुरु जी के जीवन फलसफे और पवित्र सिक्ख्यावां ते आधारित 30 मिनट की दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। इसका मकसद यह यकीनी बनाना है कि हर घर खास करके नौजवान पीढ़ी गुरु जी के भेदभाव रहित बराबरी वाले समाज की सेहत तो प्रेरित हो सके। यह पहलकदमी भगवंत मान सरकार वालों 650वें प्रकाश पुरब लई उलीके गए साल भर के प्रोग्रामों का हिस्सा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अज संगरूर विखे 9,50,00,000 रुपए की लागत नाल बने ओलंपिक पद्धर के स्विमिंग पूल का भी उद्घाटन किया। सूबे नूं भारत दा खेड तुरा बनाउण लई पंजाब सरकार दी वचनबद्धता दोहराउंदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि संगरूर जिला एशियन वर्ल्ड ते ओलंपिक चैंपियनां लई नर्सरी वजों उभरेगा।
2: वार हीरो स्टेडियम दे विच ओलंपिक स्टेडियम का स्विमिंग पूल जिहड़ा बन के तैयार होया 9,50,00,000 रुपए की लागत नाल इह पूल बनिया। इंटरनेशनल पद्धर दीआं सहूलतां दित्तियां गईआं ने। इह असल च कल्ला स्विमिंग पूल नहीं, इह साडे आउण वाले एशियन वर्ल्ड ते ओलंपिक चैंपियनां दी नर्सरी बणूगी ते जदों मैडल जित के आउणगे तां उहनां नूं आउण सार ओलंपिक दे जां कॉमनवेल्थ दे जां वर्ल्ड चैंपियनशिप दे किसे भी गोल्ड मैडल वास्ते 1,00,00,000 रुपया, चांदी दे मैडल वास्ते 75,00,000 ते 50,00,000 रुपया कांसी दे मैडल वास्ते असीं आउण सार दिंदे आ।
0: मीरी पीरी के मालक 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतों के सहयोग नाल श्री अकाल तख्त साहब विखे श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़कर समेत प्रमुख पंथक हस्तियां हाजिर रहीआं। श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। समागम दौरान श्री गड़कर ने संगतों को श्री गुरु हरगोबिंद साहब के प्रकाश पुरब की वधाई दिंदिआं गुरु साहब जी के उपदेशों से चलन की प्रेरणा दी। इस दे नाल ही गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश अस्थान गुरुद्वारा जन्म अस्थान गुरु की बटाली विखे भी विशेष समागम किए गए। इस वेले अमृतसर स्थित श्री दरबार साहब विखे अत सुंदर दीपमाला ते आतिशबाजी भी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अज 6वें गुरु साहब जी के प्रकाश पुरब मौके शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच गृह मंत्री ने कहा कि अध्यात्मिक शक्ति ते बहादुरी विचकार असाधारण सद्भावना का गहरा संदेश दिंदिआं गुरु साहब ने श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना की ते समाज नूं अन्याय खिलाफ खड़े होने लई प्रेरित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 तलवारां चुक के गुरु साहब ने दिखाया कि अध्यात्मिकता दे नाल नाल अन्याय खिलाफ निडर हो के खड़े होना विश्वास का अनिखड़वां अंग है। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी गुरु साहब जी के प्रकाश पुरब दीआं समूह संगतां नूं वधाईआं दित्तीआं ने। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर और यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अज पटियाला विखे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल नगर निगम के अधिकारियों ते होरना संबंधित विभागों के अधिकारियों

0: दुनिया दे उपमा होरू गंगा दे लाल दी बोले ओ ब्रह्म ज्ञानी
1: पापा दा नाश करेगा पापा दा नाश करेगा सत दा प्रकाश करेगा जिंदगी विच जित्तां जित्तू कदे ना हारेगा माड़े नू जीवन बख्शू जाबर नू मारेगा होवेगा बली सूरमा
0: ओ जिन्ना ने करम साड़ा उन्ना दा हो उजाड़ा तरने जो होर तकणगे गोविंद प्रितपाल दी दुनिया दे उपमा हो जू गंगा दे लाल दी बोले ओ ब्रह्म ज्ञानी
1: ਦੁਗਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਧਰਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇਗਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੂ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ
0: ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ

0: जनतक हिस्सेदारी का भी सदा दिता। सालाना अमरनाथ यात्रा लिए 55,000 श्रद्धालुओं के ठहरने लिए विस्तार पूर्ण प्रबंध किए गए ने, जिस विच वधी हुई सुरक्षा नूं ध्यान विच रख्या गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी ने, पहले काफिले नूं हरी झंडी देणगे। 3,880 मीटर उच्ची पवित्र श्री अमरनाथ जी की गुफा लिए 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई नूं शुरू होगी। यात्रा अनंतनाग जिले में रवायती 48 किलोमीटर नोनवान पहलगाम रूट और गांधरबल जिले में छोटे पर उच्चे 14 किलोमीटर बालटाल रूट तो शुरू होगी। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने कहा कि जम्मू डिवीजन में करीब 55,000 श्रद्धालुओं के रहने लिए प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं लिए मौके से रजिस्ट्रेशन बुधवार को जम्मू के तवी रिवर फ्रंट से शुरू होगी। जिन श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से EKYC वेरीफिकेशन पूरी कर ली है, उन्होंने बेस कैंप जाने से पहले अपने RFID कार्ड लेने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं श्राइन बोर्ड के दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना करन अते लाजमी सेहत सर्टिफिकेट आपने नाल रखण दी अपील की है। बजुर्ग श्रद्धालुओं ते दिल ज साह दीआं बीमारियों तो पीड़ित लोगों नूं ढुकवें डॉक्टरी प्रवानगी प्राप्त करन तो बाद ही यात्रा करन दी सलाह दी गई है। संयुक्त राष्ट्र विच अफगानिस्तान दे स्थाई मिशन ने पक्तिया, पक्तिका अते कुनार सूबिया विच पाकिस्तान दे हवाई हमलियां दी सख्त निखेधी कीती है, जिस विच औरतां ते बच्चियां समेत कई अफगान नागरिक मारे गए ते जख्मी होए ने। मिशन ने पाकिस्तान नूं अफगानिस्तान दे खेतर ते फौजी हमले तुरंत बंद करन अते अंतरराष्ट्रीय कानून दी कथित उलंघना लई पूरी जवाबदेही यकीनी बनाउण दी मांग कीती है। इस तों पहलां तालिबान दे उपबुलारे हमदुल्ला फितरत ने रिपोर्ट दित्ता सी कि 28 जून की रात को पाकिस्तानी हवाई हमलों में 36 लोग मारे गए और 163 होर जख्मी हुए सन। भारत ऑपरेशन अमिस्ता तहत भूचाल प्रभावित वेनेजुएला नूं मानवतावादी सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने राहत कार्यों का प्रसार किया है ते आफत तो प्रभावित लोगों लिए डॉक्टरी सहायता ते हंगामी राहत ते ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय बचाव ते मेडिकल टीमां वेनेजुएला के अधिकारियों के सहयोग नाल हंगामी सेहत सेवावां प्रदान कर रही ने, जो खोज ते बचाव कार्य चला रही ने अते प्रभावित भाईचारियों नूं जीवन रक्षक मानवतावादी सहायता प्रदान कर रही ने। मंत्रालय ने भी कहा है कि एक भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल कार्यशील है ते आफत विच जख्मियों नूं डॉक्टरी देखभाल प्रदान कर रहा है। आखिर च खास खबरां। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 तों वध देशां नाल 28 प्रवास ते आवाजाई पाए वाली समझौतियां ते दस्तखत कीते ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों नूं सिक्ख्या नूं इक न्यायपूर्ण ते समावेशी समाज के निर्माण लई साधन वजों वरतण दा सद्दा दित्ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक मजबूत आर्थिकता मजबूत रक्षा समर्थावां दी नहीं है। जनरल धीरज सेठ ने 31वें फौज मुखी वजों अहुदा संभालिया है ते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा विच जनतक हिस्सेदारी का सदा दिता है। इस दे नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होगा। नमस्कार।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
2: ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਲਿਸਨਰਸ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਗੈਦਰ ਨਾਟ ਟੂ ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਈਅਰਸ ਬਟ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਦਾ ਈਅਰਸ ਕਾਊਂਟ ਵੈਨ ਵੀ ਲਿਵ ਦੈਮ with purpose. So, let's listen to Talk by Dr. Usha Kapoor, Aging with Grace.
3: When grace is joined with wrinkles, it is adorable. There is an unspeakable dawn in happy old age, said Victor Hugo. Aging is a natural phenomena of human body. As one advances towards old age, the arteries harden, nervous system becomes weak, and many other degenerative problems arise, which may include heart disease, prostate trouble, loss of memory, loss of appetite, and malignant growth. Aging affects all systems of the body, that is, nervous, respiratory, muscular, cardiovascular, endocrine, etc. Max Jacobson, an American physician, wrote that respect for advancing age must be restored to our thinking, since respect will bring the aged back into the family unit. In his view, old age

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

जी हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है, प्यार दा गीत भी है और गम दा सागर भी है। यानी कि दोनों चीज़ां सानू जिंदगी दे विच एक्सपीरियंस हुंदियां ने। कदी तां सानू खुशियां आके घेर लेंदियां ने, आसे पासे सुख ही सुख नज़र आंदे ने, उस वक्त ऐदा लगता है कि बस जिंदगी इन्हां सुखां दा ही नाम है, इन्हां खुशियां दा ही नाम है, इस नच्चन टप्पन दा खेडण दा नाम है। लेकिन जिद्दां ही वक्त बदलदा है, जिंदगी अपनी करवट लैंदी है, तां दुख जदों घेरदे ने तां उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ यही महसूस हुंदा है कि जिंदगी सिर्फ दुखां दा नाम है, जिंदगी सिर्फ मुश्किलां दा नाम है, जिंदगी सिर्फ परेशानियां दा नाम है, होर दे विच कुछ नहीं। लेकिन वो वक्त भी बदलता है, जिंदगी दरअसल बदलाव दा नाम है। कदी सुख आउंदे ने, कदी दुख आउंदे ने, कदी दिन है, कदी रात है, कदी खुशियां ने, कदी गम ने, यानी कि उतार चढ़ाव जिंदगी दे विच लगा ही रहिंदा है। ते आओ जिंदगी दी एक होर डेफिनेशन सुनदे हां इस गीत दे जरिए।

जी हाँ, जिंदगी एक प्यार का नगमा है, यानी कि एक गीत है, एक संगीत है, एक साज है, ताल है, और नाल ही नाल की जिंदगी कहानी है। तुहाडी कहानी वक्री है, मेरी कहानी वक्री है, किसी होर दी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि दुनिया दे विच असी अरबां खरबां लोग जड़े ने ओ रहने हाँ, और सब दी कहानी वक्खो वक्री है। किसी दी भी कहानी बिल्कुल हूबहू किसी दे नाल नहीं मिल सकती। और तुसी देखो कि रब किन्ना वड्डा कहानीकार है कि सब दियां कहानियां वक्रियां वक्रियां लिखियां होईयां ने। हाँ, हो सकता है कि कुछ इंसीडेंट मिल जाण, कुछ सिचुएशंस या कुछ हालात साडे इक्को जिहे हो सकते ने, लेकिन कहो कि बचपन तो लैके और मरदे दम तक इक्को जिही कहानी दो इंसान इस धरती दे उत्ते जी के गए ने, तां बिल्कुल नामुमकिन है, इदां हो ही नहीं सकता। लेकिन जिंदगी जिहड़ी है ना, ओ सिर्फ और सिर्फ खुशी नहीं है, सुख नहीं है। क्योंकि जेकर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सुखां नाल या खुशियां नाल भरी हुंदी ना, मतलब किसे भी इंसान दी, तुसी कहो कि नो बडी इज़ परफेक्ट, किसे नू किसे न किसे चीज़ दी कमी रह ही जांदी है, जिंदगी अधूरी रह ही जांदी है, पूरी जिंदगी कदी किसे दी नहीं होई। इस दा एक परफेक्ट एग्जाम्पल यह है कि अगर तुसी किसे नू भी पुछ के देख लो कि क्या जड़ी जिंदगी उन्हें हुण तक जी है, जेकर उन्हें मौका मिले कि यही जिंदगी दोबारा तू जीनी है, दोबारा तेरा पुनर्जन्म होएगा और दोबारा तू सेम यही नाम, यही शख्स, यही तेरे सारे रिश्तेदार, यही आस पास दे लोग, तेरे आंढ गवांढ, ओही काम, यानी कि हर चीज़ सेम होवे। जिदा आपां एक फिल्म दी कॉपी दूजी फिल्म आपां देखदे हां कि रीमेक हो जांदे ने, सेम स्टोरी हो जांदी है, हर चीज़ सेम हुंदी है। ते क्या असी किसे इंसान नू इन्नी गल कह सकते हाँ कि जड़ी जिंदगी उन्हें जी है, जड़ी स्टोरी इस वक्त उसनू मिली है, वो डिट्टो तेनू दोबारा फिर मिलेगी और क्या वो राजी होएगा? बिल्कुल नहीं। मैं आज तक जिन्हां नू भी यह सवाल पूछया है ना, कोई कहंदा है कि नहीं, जो जिंदगी मैं हुण तक जी है, मैनू वो जिंदगी दोबारा नहीं चाहिए, कुछ नवा ही चाहिए, कुछ वखरा ही चाहिए। यानी कि कहानियां सब दियां वखरियां वखरियां ने, सुख दुख हर एक दी जिंदगी दे विच आउंदे ने, तां परफेक्ट कुछ भी नहीं है। आओ एक होर जिंदगी दे उत्ते गीत सुनते हाँ, जो जिंदगी का एक नवा नज़रिया पेश कर रहा है।

जी हाँ, इस गीत तो सानू यह भी पता लगा कि जिंदगी एक खेल भी है। कोई पास हो जाता है तो कोई फेल हो जाता है, कोई जिंदगी दे मुश्किलां नू पार कर जाता है उसनू असी खिलाड़ी मान लैंदे हाँ, तो जिहड़ा जिंदगी दियां मुश्किलां तो हार जाता है वह अनाड़ी कहलाया जाता है। यानी कि हर दिन हर पल हर घड़ी जिंदगी दा एक खेड चल रहा है, कदी असी जित जाने हाँ और कदी असी हार जाने हाँ। ते जितना हारना तां उम्र लगा ही रहिंदा है। कुछ सिचुएशंस जदों असी साडे मन दी मर्जी पूरी हो जाती है, जो असी सोचिया हुंदा साडी चाहना जिहड़ी है वो साडे अकॉर्डिंग वो हो जाती है, उस तरह दा असी खुश हो जाने हाँ और सोचते हाँ कि वाह जी जिंदगी मेरे अकॉर्डिंग चल रही है किन्नी वधिया है। लेकिन जदों साडियां बहुत वधिया कीतियां हुई प्लैनिंग्स भी फेल हो जांदियां ने ना, उदों इंसान हाथ खड़े कर दिंदा और उदों यही सोचता है कि नहीं, जिंदगी मेरे कंट्रोल विच नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैं सोचिया जिस तरह मैं चाहिया बिल्कुल जिंदगी उस तरह नहीं करती, तो मेरे हाथ विच कुछ नहीं है। उस वक्त इंसान नू इस चीज़ का एहसास हुंदा है कि यह खेड कोई होर ही खेड रहा है मेरे नाल, मेरे हाथ दे विच ना कोई चाल है, ना हार है ते ना

जी हाँ, इन्हां ने जिंदगी नू किन्ना सिंपल कर देता कि जिंदगी है क्या, सुन मेरी जहाँ, प्यार भरा दिल, मीठी जुबां, और कुछ जिंदगी नहीं है, कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ प्यार दा नाम है, कि अगर कहंदे कि तुसी कल्ले रहो तां वी आनंद दे विच रहो, और जेकर थोड़े कोल कोई आके बहिंदा है, थोड़े नाल कोई गल करदा है, तां सिर्फ उस दे नाल प्यार दे नाल गल करो, तुसी सिर्फ और सिर्फ प्यार वंडो जिन्ना प्यार वंड सकदे हो।

क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि जिहड़ा इंसान अज तुहाडे कोल बैठा है वह कल नूं तुहानूं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गरंटी नहीं होंदी। इस करके जिंदगी दे विच जिन्हों भी तुसी मिलते हो बहुत प्यार नाल मिलो, क्योंकि यह मौके बार बार नहीं मिलते। ऐसे तरह जिंदगी दे बारे, जिंदगी दे इस अनिश्चितता दे बारे कि इन्नी अनसर्टेन जिंदगी है, कुछ भी निश्चित नहीं है, उस दे बारे ये छोटी जी कविता है तुहाडे नाल सांझी करदी हां कि जिंदगी क्या है। कहिंदे कि किसी की जिंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है, मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी के सिर पर खड़ी होती है। कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा कि नहीं, जिससे मुंह फुलाकर बैठे हो आज वो क्या पता कल मिल पाएगा कि नहीं। दिल से जुड़े रिश्तों को यूं ना गलत फहमियों का शिकार बनाइए, मन मुटाव की इस गांठ को इतना कस कर ना लगाइए। ये वक्त की रेत हाथों से पल में फिसल जाएगी, तुम आवाज़ लगाते रहोगे और वो बहुत दूर निकल जाएगी। इस करके जिंदगी बहुत नाजुक है, तो इस दे नाजुकपन नूं समझिए, ना ज़्यादा अकड़िए, ना ज़्यादा डाढ़े होइए, ना ज़्यादा सख्त बनिए। बहुत कोमल जिहा, बहुत नाजुक जिहा दिल सब दे कोल हैगा, यानी कि साडा दिल नाजुक है, सब दा दिल नाजुक है, सब दा दिल सॉफ्ट है, तां कोशिश करिए कि किसी दा दिल ना दुखाइए। आओ जी, जिंदगी दे प्रति एक होर नज़रिया अगले गीत दे विच।

जी हाँ, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। मतलब जो सानू ज़िंदगी कई बार इहो जिहियां चीज़ां दिखा देंदी है, इहो जिहियां चीज़ां एक्सपीरियंस करवा देंदी है जिन्हां दे बारे तुसीं कदी सोचिया भी नहीं हुंदा। कदी ख्वाबां ख्यालां दे विच वी ओह विचार नहीं आया हुंदा, ओह थॉट नहीं आया हुंदा कि ज़िंदगी तुहाडे सामने लिया के एक तस्वीर, एक पिक्चर पेश कर देंदी है जिहदे विचों तुसीं गुजरना हुंदा है। तो ज़िंदगी नूं समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ज़िंदगी बदल रही है, बदलती रहेगी और बदलती ही आई है। आप देखते हैं कि वक्त हर चीज़ नूं बदल रहा है, चाहे साढ़े आस पास दे तुसीं देख लो, सड़कां होण या मकान होण या लोग होण, पहलां किद्दां दे सी और हुण किद्दां दे हो गए ने। ज़िंदगी बदल रही है, इसे ही बदलाहट दा नाम ज़िंदगी है। और ज़िंदगी दी हर औकड़ मुश्किल तो असीं पार हो सकते हैं जेकर साढ़े अपणियां दा साथ होएगा। तो इसे दे नाल ही साडा अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है ज़िंदगी हसीन है इत्थे ही ख़त्म हुंदा है। ऑन 8:45 होण जा रहे ने। हुण तो कुछ ही पलां बाद तुसीं सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9 ते 9:15 प्रोग्राम स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तों।

संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: श्री मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये

0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: चार दशक

0: अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम

0: आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Sevatirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework.

प्रोग्राम सरगमदा आखिरी नगमा फिल्म पगला कहीं का तू आवाज़ मोहम्मद रफी दी गीत बोल हसरत जयपुरी दे संगीत शंकर जयकिशन दा।

0: ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਰਤਨਾ ਪਾਂਡੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3

0: पंडित जी।
1: पर पत्री कुछ ऐदा दस दी है, दड़वट जमाना कट बीपी, एथे भी काले माले ने, दो व्यापत्री विच लिखे ने दो टब

तेरे नाल दो कड़िया ने असाने हसके जी पर चौना ओ प्यार दिया दो गल्ला करके वेला लिये तक नी चुप करके चढ़ जा मित्रां दा चलिया ट्रक नी।

तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। गुरबाणी दे इस फरमान तो पाव है कि सिरजनहार प्रभु सबना दी प्रतिपालना करता है सबना दा साई है सारे जीव उसदे आसरे ही हन। वो प्रभु सदा सृष्टि दे जीवां नू पालदा है ये अकाल पुरख दा बिरद ही है क्योंकि वो मेहर करन वाला है सबना दा साहिब है दयालु है सबना जीवां नू प्राण उसे ने ही बख्शे हन। तो फिर ऐ

जीव तू क्यों डोलता है? तेरी रक्षा करन वाला वही है जिसने तेनू साजिया है, जिसने तेनू पैदा किया है, वही तेनू आसरा भी दिंदा है। जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है उसने ही तेरी सार लेनी है। वह परवरदिगार प्रभु हर हिरदे विच व्यापक है, उसकी सिरजन शक्ति का कोई अंदाजा नहीं। वह सब तो वड्डा है ते बेपरवाह है। इस करके ए बंदे जिन्ना चर तेरे स्वास हैं उससे दी ही बंदगी कर। हे प्रभु तू सर्व कला समर्थ है, कथनी तो परे है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है। ए जिंद प्राण तेरी ही दित्ती हुई रास पूंजी है। हे प्रभु तेरे अगे यही अरदास है कि तेरी रहमत सदका ही मैनू आत्मिक सुखां दी प्राप्ति हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 724 ते तिलंग राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का कथन है। तू काहे डोलै प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन किया भाई मेहताब सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे।

0: तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार, जिन पैदाइस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन किया सी भाई मेहताब सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख का मुढ़ कदीम तो ही सुभा है कि वह सबना का माँ प्यो होण करके सबना की सार लैंदा है। हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक, वो प्रभु ही सबनी थाई रख्या करन वाला है। मन विच विचार आउंदा है कि वह प्रभु किस स्थान ते वसदा है। बाणी विच फरमान है कि सत संगत साध संगत ही प्रभु का निवास स्थान है, क्यों जो साध संगत विच संत जन प्रभु प्यारे भगत साध संग करदे हन ते करता भी उत्थे ही वसदा है। मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभु वसै जियो। प्रभु ते पूरन भरोसा रखण वाले भगतां दा अकाल पुरख ही सहाई है, राखा है, उन्हां दी रास पूंजी दी रख्या भी करदा है। ऐसे भगत संत जदों गुरु अगे कोई भी अरजोई करदे हन तां उह परवान हुंदी है ते उन्हां दी इज्जत पद दी राखी ते रास भाव नाम रूपी पूंजी दी रख्या भी सृष्टि दा सरबुच ते मालक प्रभु आप करदा है। सुनदियां नवप्रीत सिंह होरां पासों वार्ता, रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास।
1: विचार अधीन यह पावन वाक बाणी दे बोहित, महान उस रइये श्रोमणी शहीद गुरु अर्जन देव जी ने बिलावल राग विच उचारिया है अते गुरु ग्रंथ साहब दे अंग 816 ते सुभायमान है। इस पावन वाक अते समुचे शब्द राही गुरु साहिब सोझी बख्शदे हन कि अकाल पुरख अगे बेनती करन द्वारा मनुख नू कोई औकड़ मुश्किल पेश नहीं आउंदी है। वाहिगुरु अपने भगतां दी रास पूंजी दा आप रखवाला है। सारे गुणा नाल भरपूर प्रभु दा नाम सिमर के सारे कम सफल हो जांदे हन। परमात्मा आप साध संगत विच वसदा है अते भगत जनां लई साध संगत एक स्थान है जिथे बख्शिशां दी

काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख विसारण हार। इस शब्द का गायन किया सी भाई जसबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या न जाई साधक सिद्ध सगल शरनाई गुर के।

जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बिचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम

रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछा जाकी शरणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी।

तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत है आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव दृष्ट कारण करन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरन जिन्हों बात निश्चल त्रु जानी तई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक में जलहार बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर

इशनान करे पर बात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेह पूर्व विद वर्णन सतगुर गुर से अलखगत जाकी श्री रामदास तारन तरन जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेह पूर्व विद वर्णन सतगुर गुर से अलख

सहन सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख हुए सिफ तक संबंधी नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म।

सज्जन सच्चा पात साहो सिर सांद, जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे। सज्जन सच्चा पात साहो सिर सांद, जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाह।

कीमत कौन करे प्रभु तेरी, तू सर्ब जिया दयाला। सब किश कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाल। राख ले हो नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत किरपाल। कीमत कौन करे प्रभु तेरी, तू सर्ब जिया दयाला। सब किश कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाल। राख ले हो नानक जन तुमरा, जो पिता पूत किरपाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा, कर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किस हौ जाची किस आराधी, जा सब को कीता होसी। जो जो दिसै बड़ा बडेरा, सो सो खाकू रलसी। निरभउ निरंकार भव खंडन, सब सुख न

राम कहे सैतंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे सब को साच समावे ऋग कह रहे अप्रभूर राम नाम देवा में सूर नवे प्रचित जाहे नानक तो मुखंत्र पाहे जुज में जोर शली चंद्रावल का।

खाए दीवाने को कल में का हवा तुम मेल धर ले लेखा फिर छुटे नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही तैतारिये देखे की।